इस संसार का रचयिता ईश्वर है। उसकी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। जो कुछ हुआ है या हो रहा है और आगे होगा, वो सब ईश्वर की ही रचना है और केवल वही इसका ज्ञाता भी है।

I have been a great admirer of this wonderful person, Mohammed Rafi. मैं हमेशा सोचता था कि भाई ये ऐसे टैलेंट बहुत रेयरली मिलता है, बहुत रिस्पेक्ट में मैं करता था उनको. रफ़ी साहब हमारे हिंदुस्तान के संगीत जगत में मेल सिंगर की हैसियत से सबसे बड़ा गाने वाला है.

0: सुनो, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।
1: मुजस्सिम चांदनी हो तुम, अंधेरा है तो रहने दो मुझे।

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozone Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

0: En tot zover het nieuws op Ujana Radio.
1: Ujana Radio. देश भर में सुनाई देता है फीएनडीएबी प्लस तो घर में तो ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो डीएबी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या द बेस्ट उजाला रेडियो
2: तुझे लगे ना नजरिया
3: विल जे उजाला रेडियो ook op je smartphone en tablet ontvangen ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

चलास सोना चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया उजाला रेडियो वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन ऑफ उजाला पिंड नाउ उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ।

फिल्म तकदीर का गीत मोहम्मद रफी साहब की आवाज। मुझे तुम उजाला रेडियो है ये सुनने वालों, इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए आप हमेशा देखे वेबसाइट पर ujala.nl। अगला गीत जो हम तैयार रखे हैं सुनाने के लिए वो होंगे उदित नारायण जी की आवाज में।

अब तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। उदित नारायण की आवाज में गीत आप सुने, फिल्म डर से निकाला हुआ, उजाला रेडियो। फिल्म आशिकी का गीत आप सुनिए।

गाम आप लोग सुन रहे हमारे प्यार शिनमलु, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते एंड आदाब। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी है, आप हर को हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबाद अर्ज़ किए जाते हैं। मैं हूँ सुभाष और जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है वहां तक मैं आप सभी को प्यार से, दुलार से स्वागत कर रहा हूँ।

यही आशा और उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम भी आप लोग को पसंद आएगा। और चलिए गाना जो प्रोग्राम में हम आप लोग को सुनाने वाले हैं, गाने वाले होंगे SP बालसुब्रमण्यम। यू आर उजाला रेडियो।

वेल यार, तुमसे मिलने की तमन्ना है ओ मेरे यार, और ये प्यार का वादा है। यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे शनोलो, और उजाला रेडियो का दफ्तर का फोन का नंबर है 9204907, या तो हमारा वेबसाइट पर आप जाइए www.ujala.nl, या तो info@ujala.nl पर हर एक इन्फो, हर जानकारी आपको मिल सकेगा।

वेल वेल यार, आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। अवसरों से कुमार शानू एंड कविता कृष्ण मूर्ति जी के बांस में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, और चलिए अब की बार सुनिए ये गाना।

वेल वेल यार, मेरे दिल में तुम यू भी रहना प्यार प्यार बनके, आई हो मेरी जिंदगी में तुम प्यार बनके। अलका याग्निक जी के वंश में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे हमारे प्यारे सिनेमलो, और गाना जो प्रोग्राम में इस बार आप लोग सुनेंगे गाने वाले होंगे उदित नारायणन, साधना सरगम।

वेलियर, पहला नशा पहला घुमा। अब इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने उदित नारायण एंड साधना सरगम की आवाज में। अब गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो गाना चेहरा चेहरा क्या देखते हो मेरी आंख में उतर कर देखो ना।

वेल वेल यार, चेहरा चेहरा क्या देखते हो? हम ना बोलो दिल में उतर कर देखो ना, हम बोलो चेहरा क्या देखते हो, मेरी आंख में उतर कर देखो ना। आशा भोसले एंड कुमार सानू जी की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम।

अगर दिल मांग लेते तो हम यार जान दे देते प्यार के लिए, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। और अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो जरूर से कुछ कुछ होता है यार, कुछ कुछ जरूर से होता है।

तुम पास आए और कुछ कुछ होता है, अब ये दिल ना जागे ना सोता है। जरूर से यार कुछ कुछ होता है, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं हमारे प्यारे सुनने वालों।

वेल वेल यार, हमको हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे, और हमारे प्यारे चैनल लोग, अगर आप लोग काम कांश दिलाना हो यू आर उजाल रेडियो पर, तो हमारा दफ्तर का फोन का नंबर है 9 3 9 9 9 7 पर आप लोग तार कर सके, हर एक जानकारी आपको मिल सकेगा। चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, और इस तरह से गाना पेश है

में संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net Jala Radio, de Hindustanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Jala Radio, always shining.

उजाला रेडियो पर आप गीत को सुने, फिल्म का नाम दिल क्या करे। अगला गीत जो प्रोग्राम में होंगे सुनने वालों, पेश है आदिनाथ मंगेशकर एंड ज्योत्सना हर्दिकर, इन लोगों की आवाजों में। इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए उजाला.nl आप जरूर देखें।

दिल खिले और जीने को मुझे क्या चाहिए। फिल्म क्रिमिनल का गीत फिर से सजाइए और गाए गए उजाला रेडियो पर आप सुने।

खुशी के साथ गमी है पैदाइश के साथ माल उजाला रेडियो के जरिए सुन वालो मृत्यु समाचार सुनने के लिए आप ध्यान दीजिए। अलमीर स्टाद के रहने वाले समस्त परिवार मुन्नीलाल बहादुर के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते 26 तारीख सितंबर को जातदग 26 सितंबर को 69 साल की आयु में इन लेफ्टाइट फॉन 69 यार verzorgingstehuis Kiekendief Almere Stad mee. Almere Stad ke rehne wale swargiya pita Alam Prasad Munilal, swargiya mata Sukhya Jugan ke beta, behen Stella Siu Sohai Munilal ke bhai, behenoi Suren Siu Sohai ke saar, Amrit aur Jayanti ke mamu Varsha Bajnat Misir और वाहिद निजाति के ममुआ ससुर दो लड़कन के नाना अलमीर स्थित कोलकप्लैन के रहने वाला श्रीमान राजेंद्र प्रसाद मुनीलाल का देहांत हो गया है, जिन्हें लोग ज्यादा राजन और चली के नाम से जानते थे। इनका देहांत हो गया है फर्सोर्गिंगस्टहाउस कीकंदीव अलमीर स्थित में। अलमीर स्थान से समस्त परिवार मुनीलाल बहादुर के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते 26 तारीख सितंबर को जातदग 26 सितंबर को 69 साल की आयु में इन द लेफ्टाइट फॉन 69 यार verzorgingstehuis Kiekendief Almere Stad mee. Swargiya pita Alam Prasad Munilal aur swargiya mata Sukhya Jugan ke beta. Behen Stella Siu Sahai Munilal ke bhai, behnoi Surin Siu Sahai ke saar, Amrit aur Jayanti ke mamu, Varsha Bajnat Misir aur Wahid Najati ke mamwa sasur, do ladkan ke nana. अलमीर स्थित कोलकप्लैन के रहने वाला श्रीमान राजेंद्र प्रसाद मुनीलाल का देहांत हो गया है, जिन लोग ज्यादा राजन और चली के नाम से जानते थे। इनका देहांत हुआ है फर्सोर्गिंगस्टहुइस कीकंदीव ते अलमीर स्थित सूरीनाम जिसमें निकेरी बोनाकर पोल्डर नंबर 12 के जो रहने वाला था। अर्थी से आखिरी मौका है विदा लेने के लिए आने वाले बृहस्पतिवार आनस्ताना डोनदग 1 अक्टूबर ओस्टरड्रेव 15 अलमीरे में और अभी शाम के वक्त 5 से लेकर 6 बजे तक दाह क्रिया को किया जाएगा। Uitvaart, ja, crematie is aanstaande vrijdag, aan de Sukruwaar, dotarik oktober, 2 oktober, vanaf 2:30. Begraafplaats, crematorium Westgaarde, ook meer weg, doosoppetjes ter Amsterdam, Oostdorp mee. Samas parivaar, jan, bij het aanzien in Wiedenheim, is gewerko oor doortrek behoudtja, der in kleem. Ujala Radio, samas parivaar, Munilal ke doeg mee, shamil hai, jahan tak aapne sunhe, Ujala Radio ke zirhe pesh kiya gaya hai, mritu samachar.

0: उजाला सोना चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया
1: यू आर हमेशा
2: सुनने वालों सलाम और नमस्ते। ये आप ही का उजाला रेडियो है और इस प्रोग्राम में मशहूर और मधुर आवाज में एक से बढ़कर एक यादगार नगमे आप सुनेंगे। आप बस सुनते रहना।

0: जानास सोना चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया।
1: आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो।
2: हाँ? क्या कहा?

0: दिल को छू जाने वाले गाने सिर्फ उजाला रेडियो पर।
1: असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा हो।

0: उजालास सोना चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया
1: है सुनो वालो, मैं हूँ आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वो ही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहाँ प्यार खुशी और मस्ती मिलता है।
2: उजाला रेडियो पर संगीत का सफर जारी है।

उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।

दमादम मस्त कलंदर भैया आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए। और आज जबकि एक तारीख अक्टूबर है तो आज है कोनो के फरियारी एंड यारख इस या द यारख इस onze enige echte collega Robbie Makka के आज फरियारी है। Hij is vandaag jarig. Kijk weer eens ik heb wel wat aan hè, maar bedoel ik wel. Robbie van harte gefeliciteerd namens al je fans. जितने फैंस हैं तो रॉबी मक्का के फैंस की तरफ से बधाइयां शुभकामनाएं पेश हैं एंड बिजोनो नामस उजाला रेडियो के पूरा क्रू के तरफ से नामस उजाला रेडियो ओक फन हार्ट गेफेलिसिटेट रॉबी मक्का मेट योर

उजालास सोना चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया उजाला रेडियो देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलम तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए यह है उजाला रेडियो और अब बजने जा रहा है ये गीत आपके खातिर उजाला रेडियो पर हम बजाते हैं तोर खातिर

बने रहिए उजाला रेडियो पर, म्यूजिक बोलता रहेगा आपके घरों में, आपके मोटरकार में या जहां पर भी आप हैं।

ये था उजाला रेडियो पर बजने वाला गीत। उजाला रेडियो आप सुन सकते हैं हर एक दिन, हर एक रोज, सात दिन, 24 घंटे लगातार, ऑनलाइन ऑफ या डीएबी प्लस नीदरलैंड भर में।

बार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

7:08 गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, ये उजाला रेडियो है और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। आज गुरुवार है मेरे प्यारे सुनने वालों, नए महीना अक्टूबर का पहला दिन, पहला गुरुवार, और चंद घड़ियां बचे हैं इस दिन का जो हम और आप मिलकर बिताएंगे। लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रतनाम से पेश करेंगे प्रोग्राम फिर एक बार दिल की आवाज। तो तहदिल से स्वागत करता हूं आप सभी को मेरे प्यारे सुनने वालों, आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब अर्ज है। Vandaag is een bijzondere dag, een van de mooiste dagen van het jaar. तो पता नहीं आप कहां कहां पर ट्यून किए हुए हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, तहदिल से स्वागत करता हूं, शुभरात्रि एंड हील हुए नाफन। हमारे ये प्रोग्राम के दौरान मेरे प्यारे सुनने वालों, व्हाट्सएप के जरिए अगर आप बातें करना चाहोगे तो मुमकिन है 020-363-9000 पर आप अवश्य ऐप कर सकते हैं। और रहे दफ्तर के कार्रवाई, जैसे कि आपकी फरमाइशें, जरूरी खबरें, मौत की खबरें, किसी भी प्रकार का जानकारी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त करना चाहोगे तो उजाला रेडियो को आप कांटेक्ट कर सकते हैं तार के जरिए सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे तक, और वो भी 020-409-0807 या तो मेल के जरिए मेरे प्यारे सुनो, किसी भी दिन किसी भी पल किसी भी वक्त जब भी आपको उजाला रेडियो का जरूरत पड़े, जैसे मैंने कहा आपके हर एक कामकाज के लिए जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते आप 24 घंटे 7 दिन लगातार 24/7 info@ujala.nl info@ujala.nl पर आप मेल कर सकते हैं।

आज मेरे प्यारे सुनो लो, जैसे मैंने कहा, एक मेरे लिए एक बहुत सुंदर दिन है। हर साल का ये दिन जी खुश हो जाता है, और कारण ये है कि आज मेरी प्यारी बेटी, मेरी गुड़िया रानी छाया रेणुका का जन्मदिन है। तो बधाइयां, शुभकामना, अच्छी तंदुरुस्ती के साथ प्रार्थना कर रहा हूं ऊपर वाला से, भगवान जी से, कि हमारी बिटिया रानी को दुनिया के सारे सुख दे, और जो भी वो कदम उठाएंगे आगे बढ़ने के लिए वो सभी सफल हो। बस कामयाबी और कामयाबी उनके कदम को चूमे। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे छाया। फंडाख में लेकर मिची मुडर सांद्रा मेट कैफिन आउट इंग्लैंड मिची ग्रोटे सिस अंजलि यर स्वागर रिया सिसर गनीत अरवन। We houden allemaal heel veel van jou, Chaya. Ik heb een liedje klaargezet. Chaya, het is een mooi liedje met mooie betekenis. Je moeder mag het voor jou vertalen. Speciaal omdat je jarig bent. En nogmaals, we love you all.

पलकों के तले ये ज्योति पक है जले, यू ही जलते रहे सदा, है हमारी यही दुआ और प्रार्थना। स्पेशल फोरोंस गुड़िया रानी, छाया रेणुका राम दुलारे पांडे, नामस पापा एल्स ये मुडर सांद्रा, यसुस एंड स्वाहर अंजलि एंड रियास, एंड नतुलक केविन, एंड नामस इडरेन डी फान यू हाउट, फान हार्ट गेफेलिसिटेर छाया। मेरे प्यारे सुनो, ये था बिटिया रानी के लिए मेरा पहला इस प्रोग्राम दिल की आवाज में उनके लिए खूबसूरत गीत, एक नगमा। इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हमारे प्रिय सहिल लुधियानवी जी का एक रोमांटिक सॉन्ग आप तक मैं पेश करने जा रहा हूँ। सहिल जी का बहुत सारे नगमाएं मुझे इतनी पसंद है, मैंने कई बार आप सभी से कहा है, क्योंकि इनके लिखने का जो स्टाइल है मुझे काफी पसंद है। दिल में जो बातें हैं आज चलो हम कह दें, क्योंकि कल का भरोसा क्या, आओ चलो इसे दम कह दें। हसीनों के पुजारी किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी की आवाजें मैं पेश करने जा रहा हूं दिल की आवाज में, लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रोटरडम से।

0: virtual DJ.
1: आंखों ने चाहा, दिल ने सराहा, पर मैं जुबां से नहीं कह पाई कि दिल की कहानी दिल में रही तो मिट ना सकेगी कभी ये तन्हाई। दिल में जो बातें हैं आज चलो हम कह दें, क्योंकि कल का भरोसा है क्या, कल हो ना हो। हसीनों के पुजारी किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी, महान कवि सॉन्ग राइटर शायर सहीर लुधियानवी जी का रोमांटिक सॉन्ग इनका लिखा हुआ, दोनों ने मिलकर गाए हैं। फिल्म का नाम जोशीला। मेरी प्यारी सुनने वालों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी।

0: Met die Paris en Holland is 5 minuten voor 8:30. सरे 8 बजने में 5 मिनट बाकी हैं. ये है दिल की आवाज लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रतनम से जो फिर एक बार आप तक पेश हो रहे हैं. समीर का लिखा हुआ आपकी बार एक नगमा जो शान और अलका याग्निक मिलकर गाएंगे. डट भरा गीत है और गीत का बोल है आपसे है गिला लेकिन आपसे भी है प्यार. आपका था मुझे हर पल इंतजार लेकिन बर्दाश्त नहीं होता अब मुझसे मेरे यार. क्या बात है पेश है हीरो निवार.
1: ना करेंगे ना आजमाएंगे तुम जहां पाव रखोगे ये दिल बिछाएंगे. हम तुम्हारी वफा की दुनिया में प्यार ही प्यार

आपसे है गिला, आपसे ही है प्यार, आपका था मुझे हर पल इंतजार, बर्दाश्त नहीं होता मुझे मेरे यार, आपकी खता बेवफाई माफ करता है दिल ना जाने क्यों। ये डट भर गीत समीर अनजान का लिखा हुआ, मिलकर गीत गाएं शान और अलका याग्निक, फिल्म का नाम बर्दाश्त। इस गीत के बाद चलो श्याम राज जी का एक लिखा हुआ नगमा दिल की आवाज में पेश करता हूं। द टाइगर ऑफ बंगाल कुमार सानू और विजेता पंडित जो मिलकर गीत गाएंगे, कि वादे ना हो कसमें ना हो, शर्तें भी ना हो रस्म में भी ना हो, बस प्यार में प्यार ही प्यार हो।

कितना सुहाना दिल का जहां है, कितना सुहाना दिल का जहां है, हर सांस अपनी तो एक दास्तां है, ना कोई रूठे और ना कोई मनाए, बस एक दूजे पे धड़कन लुटाए। आज चलो खोए रहे यूं ही सनम हम तुम, मैं नींद हूं तू है मेरे सपना, क्या खूबसूरत है अपना ये रिश्ता। मेरे प्यारे सुनो लो, प्यार भरे शब्द है ये, प्यार भरे अल्फाजे श्यामराज जी के कलम से जो लिखा गया है और मिलकर गीत गाए हैं विजेता पंडित और टाइगर कुमार सानू। शास्त्र फिल्म का नाम शास्त्र। दिल की आवाज में एक भूले हुए हीरा को पेश करने जा रहा हूं, ये भी कम रोमांटिक नहीं। योगेश गावर जी का लिखा हुआ एक नगमा है जो नाइटिंगेल आशा जी और सुरों का बादशाह द लेजेंड पटमा श्री मोहम्मद रफी साहब जी मिलकर जो गाएंगे। जिंदगी के सफर में ना जाने कब कैसे ये दो अनजाने हुए प्यार में यूं दीवाने, हुए प्यार में यूं दीवाने। एंजॉय मेरे प्यारे सुनने वालों, ब्यूटीफुल सॉन्ग।

जिंदगी के सफर में ना जाने कब कैसे ये दो दीवाने हुए प्यार में यूं दीवाने। खूबसूरत प्यार भरा नगमा योगेश गौर जी का लिखा हुआ, नाइटिंगेल आशा जी और रफी साहब जी की आवाजें। व्हाट्सएप पर बातें करना चाहोगे मेरे प्यारे सुनने वालों, 0 3 3 9 0 0 आप अवश्य हमारे प्रोग्राम के दौरान ऐप कर सकते हो। कुछ लोगों से बातें हो रहे हैं, आप भी कुछ बातें करना चाहोगे तो ये मुमकिन है। निधा फासली जी का एक रोमांटिक सॉन्ग जिसे आप यकीनन पसंद करेंगे, नाइटिंगेल आशा जी और अनवर हुसैन को पेश करने जा रहा हूं अब की बार दिल की आवाज में ये खूबसूरत गीत लेकर।

दुआएं दे रही है पेर मौसम जो गया सा है, तुम्हारा साथ है जब से हर एक मंजर नया सा है, हंसी लगने लगी है मुझे हर रह गुजर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मोहब्बत भी रंग लाती है, आहिस्ता आहिस्ता। निदा फासली जी का लिखा हुआ ये ग्रेट रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों अपने खूबसूरत आवाजों में मिलकर गीत गाए हैं नाइटिंगेल आशा जी और अनवर हुसैन। फिल्म का नाम भी है आहिस्ता आहिस्ता। मेरे प्यारे सुनने वालों, वक्त तो आप जानते हैं कि कितनी रफ्तार से आगे निकलते हैं, और निकल गया ये पहला घंटा। आखिरी गीत इस घंटे का पेश करने जा रहा हूँ, इस आखिरी गीत के बाद ब्रेक। कुमार सानू द टाइगर ऑफ बंगाल श्यामराज जी का लिखा हुआ नगमा ये गाकर सुनाएंगे, ये नगमा।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू।

जब दो दिल टकराएंगे तो क्या होगा, प्यार होगा। और जब दो पत्थर टकराएंगे तो क्या होगा, निकलेगा अंगारा। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, इनवर साहब जी के लिखा हुआ ये खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग प्यार भरा नगमा। मिलकर गीत गाए हैं किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी। फिल्म का नाम तो गुलाब। ये उजाला रेडियो है मेरे प्यारे सुनने वालों, और 14 मिनट गुजर चुके हैं वो भी 9 बजकर। आपको मालूम रहे मेरे प्यारे सुनने वालों कि आने वाले शनिवार 3 तारीख अक्टूबर इस महीना का जो पहला शनिवार है, आपका साथ हम देने नहीं आ पाएंगे, प्रोग्राम हम सजा नहीं पाएंगे। कारण यह है कि एक बहन आइटलैंडर और आज बना रहा हूं प्रोग्राम रात्रि में 11 बजे तक, और फिर आप सभी से मिलेंगे इस नए महीने अक्टूबर का पहला बुधवार, वो भी 7 तारीख, जबकि हम प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर फिर एक बार पेश करेंगे। ये प्रोग्राम दिल की आवाज 8 तारीख अक्टूबर को पेश करेंगे फिर एक बार, और शनिवार का प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर अगले सप्ताह 10 तारीख अक्टूबर को जरूर से जरूर खिदमत में हम पेश करेंगे। अलीन कुमन सैटरडे 3 अक्टूबर धन बने करनी थी नाइटिंगेल आशा जी और कुमार सानू।

ये हुस्न और ये मस्तियां छाने लगी है मदहोशियां, अपने जुल्फों की खुशबू उड़ा और मुझको तू दीवाना बना। देखा तेरी मस्त निगाहों में नशा है, अदा है, मोहब्बत है, और आ जा तुझे बाहों में ले लूं मैं। रूप ये गजब है, कयामत है, धड़कने तेज हो जाने दो और प्यार में मुझे आज खो जाने दो। महेंद्र दलवी जी का लिखा हुआ एक एक लफ्ज प्यार भरा, और अपनी प्यार भरी आवाजों में द टाइगर ऑफ बंगाल कुमार सानू और नाइटिंगेल आशा जी ने मिलकर गीत गाए हैं। खिलाड़ी फिल्म का नाम, मेरे प्यारे सुनने वालों,

कुछ लोगों ने ये कश उठाए हैं ऐप करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपके ऐप के लिए। धनहल्दर का इल्सर हमदयाल जी, अम्स्टरडाम का कैटरीना, मार्सब्रुक का हेयर एंड्रू जी और चित्रा जी, रोटरडाम का भैया राजेश सिंह, अम्सल्फेन का समझनिया सुशीला, चंद्रिका सिंह जी, ऐत डेनहाग लिफमिक, ऐत आपल दोरन लिफ सफूरा जी, ऐत ग्रोनिंग शहर लिफ बेटी जी, और स्वाग से मार्गरीट जी, प्रणाम से आनंद ले रहे हैं।

आप सभी को दिल से थैंक यू वेल धन्यवाद। मैं अगले गीत की ओर आपको ले चलेंगे। अब की बार द नेम दैट स्पेल्स मैजिक उदित नारायण और हल्का याग्निक मिलकर गीत गाएंगे। सरताज बादशाह समीर का लिखा हुआ नगमा, ये भी प्यार भरा है। इस गीत के बाद मैं एक छुपा हुआ हीरा आप तक पेश करेंगे जरूर। मवहानियर्स हीर नाला इस ना शहर में हुआ ना घर में हुआ, प्यार तो बस हुआ नजर में हुआ, ये तो आई नजर दिल के पार।

ना शहर में हुआ ना ही घर में हुआ, प्यार तो बस हुआ एक नजर में हुआ। प्यार तो होता है प्यार, या लती सोकुआ है। समीर का लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, अलका याग्निक और द नेम दैट स्पेल्स मैजिक उदित नारायण ने मिलकर गीत गाए हैं। अब की बार आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ एक नगमा पेश करने जा रहा हूं। गीत गाएंगे राहुल बर्मन जी अपनी अलग सी खूबसूरत आवाज में। उमा जी तेरा ये नैया से छोटा रे किनारा एक डर भरे गीत है। और कहां ले चली समय की धारा, बिछड़ गई सब तेरे अपने और उजड़ गए सब सुंदर सपने। दिल की आवाज में ना सिर्फ प्यार भरे नगमाएं होते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, कुछ दर्द भरे नगमाएं भी इसमें शामिल हैं। और आपको बता दूं कि धीरे धीरे हम बढ़ेंगे कुछ पुराने सॉन्ग्स की ओर। आखिरी घंटे में सोई सो खामवत यार सीफ दख सेस्ता एनुखावर शायद उन दिनों के नगमाएं आप तक हम पेश करेंगे। फिलहाल तो आर डी बर्मन की आवाज में आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ ये गीत।

माझी तेरी नैया से छूटे या छूटा किनारा और कहां ले चली समय की धारा, बिछड़ गए सब तेरे अपने, उजड़ गए सब सुंदर सपने, ओ माझी तेरा खेल बिगड़ गया सारा, कहां ले चली समय की धारा। एक नगमा डर्द भरे आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ और राहुल बर्मन यानी कि आरडी बर्मन की आवाज में आप तक हमने ये गीत को पेश किया है, आर पार फिल्म का नाम। अनूप महाबली अर्दन बोस तंकीवेल आपके लिए, अनूप महाबली जी भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, डन बोस में सुन रहे हैं प्रोग्राम, डंकीवेल और स्वागरी हंस लक्ष्मण सिंह जी भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं दिल की आवाज, डंकीवेल स्वागत। एक और 90s का नगमा, उसके बाद हम सीधे आपको ले चलेंगे पुराने कुछ गाने की ओर। फिलहाल तो गाना जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं दिलीप ताहिर जी का लिखा हुआ, कविता कृष्णमूर्ति और द टाइगर ऑफ बंगाल कुमार सानू की आवाजें। कि तेरी जुल्फे शाम सी रोशन, तेरा चेहरा नया सवेरा, क्या बात है।

तेरी जुल्फे शाम से रोशन और तेरा चेहरा नया सवेरा। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुन वालों, सेवा में जो पेश हुआ है दिलीप ताहिर जी का लिखा हुआ एक एक खूबसूरत अल्फाजे, खूबसूरत छप जो द टाइगर ऑफ बंगाल कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति जी ने मिलकर गाए हैं, रामगढ़ के शोले फिल्म का नाम। एक ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग उन दिनों का जो अभी तक और आज भी कल भी और सदियों तक मशहूर रहेगा, शली शैलेंद्र जी का लिखा हुआ तुम सा मीत मिला और दिल का फूल खिला। The man with the golden voice of India, Talat Mahmood ji aur Geeta Dutt ji ki awaazein।

जैसे दिन संग है रात, रहेंगे हम तुम साथ, और आवक हो जाए हम प्यार की राहों में, भूल के दुनिया के सारे गम सपनों की बाहों में। The man with the golden voice of India, Talat Mahmood ji aur Geeta Dutt ji, Shali Shalender ji ka likha hua nagma from the movie Midnight. Ek aakhri geet mere pyare sunne walo, Kishore Kumar ki awaaz aur Yogesh Gaur ji ka likha hua. Is geet ke baad break ke us paar aap sabhi se fir hum zarur se zarur milenge.

अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

0: अच्छी नहीं सनम दिल लगी दिले बेकरार से, खेल ही खेल में जाएगी एक जान। कहते हो तुम तो यूं ही सही कि ऐ मेरे हसी, कि सारी खटा जवानी की है कुसूर आपका नहीं। इस तरह से कर जाते हो तुम शरारत जब मिलते हो प्यार से। खूबसूरत छेड़छाड़ प्यार वाला सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों ने ग्रेट मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ, और जो मिलकर गाए हैं नाइटिंग इलाशा जी और हसीनों के पुजारी किशोर कुमार। राखी और हटकड़ी, राखी और हटकड़ी फिल्म का नाम। सत्या जी प्रणाम से आनंद ले रहे हैं, तो सत्या जी को हम कहेंगे थैंक यू वेल लेकर खनित दारे नाम सदम फन यू आर। इस गीत के बाद हम लता जी और मुकेश जी का एक नगमा आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ प्यारा सा खूबसूरत सा एक अमर संगीत पेश करने जा रहा हूं दिल की आवाज में। ये रोनिवार लाइफ एंड आर एक यूआर के स्टूडियो रतनाम से। धीरे धीरे भूल कोई सुनना ले,
1: धीरे धीरे भूल कोई सुनना ले।

कह ले कुछ कर ले ये संसार, हम प्रेमी हैं हम तो करेंगे प्यार। कोई देख ले तो देख ले और कोई जान ले तो जान ले, हमारे सर पर कोई दोष नहीं और कोई जोर हमारी जवानी पे भी नहीं। तेरे बगैर तो एक एक दिन अब लगता है एक सा, तेरे बिन मेरा भी है यही हाल। तो आ प्यार कर दुनिया से ना डर, और देखो अब मत दूर जा बस तुम पास आ। देखो पास आ गया मैं तो शीशा नहीं हूं, या तो मैं शीशा हूं पत्थर नहीं हूं। शीशा तो टूट जाएंगे ना। खूबसूरत गीत, रोमांटिक सॉन्ग, जिसकी एक एक शब्द आनंद बख्शी जी ने लिखा और अपनी खूबसूरत आवाजों में हार्ट ऑफ मिलियंस मायती मुकेश जी और संगीत की देवी लता जी ने मिलकर गाए हैं। गोरा और काला फिल्म का नाम। दिल की आवाज है ये मेरे प्यारे सुनोल। और घड़ी की तरफ मैं देखूं तो 10:17 गुजर चुके हैं, 17:03, और रात्रि में 11 तक आपका साथ हम देंगे। फिर एक बार मेरे प्यारे सुनोल, कल मैं रहा लेकर प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर, आज हूं दिल की आवाज के साथ आपका दिल बहला रहा हूं। आने वाले शनिवार हम नहीं रहेंगे, कोमल साथ रात्रि अक्टूबर खीन सैटरडे नाइट फीवर हिलास। लेकिन अगले हफ्ते 7, 8, और 10 तीनों दिन भरपूर और लाइव स्टूडियो रोटरडम से आपका हम दिल बहलाएंगे। गुलजार साहब जी का लिखा हुआ गीत आज हमने पेश नहीं किया है, चलो इनका एक रोमांटिक सॉन्ग पेश करूं। एक नगमा जो मिलकर गाएंगे सूरों का बादशाह द लेजेंड पद्माश्री मोहम्मद रफी साहब जी और शारदा, इन दोनों अपनी खूबसूरत आवाजों में ये नगमा पेश करता है।

आस होता है, जाने कौन आस पास होता है। खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग गुलजार साहब जी, इनका लिखा हुआ, दलेजन पद्माश्री मोहम्मद रफी साहब जी और शारदा अपने खूबसूरत आवाजों में गीत गाए हैं। फिल्म का नाम सीमा। मेरे प्यारे सुनो वालों, एक गीत और दो लेजेंड्स ने गाए हैं, दोनों फैशन सेवा में हम पेश करने जाएंगे आप सभी के लिए। फिल्म का नाम मेरे प्यारे सुनोलो प्यार का मौसम, द ग्रेट मजरू सुल्तानपुरी जी, मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ ये प्यार भरा गीत किशोर कुमार की आवाज में आप सुनेंगे। उसके बाद में दलेजन पद्माश्री मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज में भी आपको हम सुनाएंगे वही नगमा। दोनों अपने ही रंग और ढंग में, अपने ही स्टाइल में गीत गाएंगे। पेश करता हूं तुम बिन जाओ कहां,

तुम बिन जाऊं कहां कि दुनिया में आके कुछ ना फिर चाह कभी चाह सनम तुमको चाह के। दो फर्शन फिल्म का हमने आप तक पेश किया है, किशोर कुमार का फर्शन और एक रफी साहब जी का। फिल्म का नाम प्यार का मौसम और खूबसूरत गीत, खूबसूरत नगमा मजरू सुल्तानपुरी जी इनका लिखा हुआ। एक मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों और वो भी सने 10 बजकर। इन मिनट ओवर हाल्फ एलफ एक बखरी पद नीलांत हारे उकाना तेरे ग्रीकलांत ओके। Het is nog niet afgelopen, toch? Hopelijk ze Age Chalkar Jiti. Maar ik hoef de standen niet te weten, mensen. Batadele te niet hem. Doe je het hogeli? Ik durf maar een geet op kibar, seva me. Shalindra ji, mahan. Shair, songwriter. Shalindra ji. इनका लिखा हुआ एक गीत, संगीत की देवी लता जी की आवाज पेश करने जा रहा हूं, दिल की आवाज में ये नगमा।

वही है गमे दिल, वही है चंदा तारे, हाय वही हम बेसहारे। रुला के गया सपना मेरा और बैठी हूं कि कब हो सवेरा। जटभर गीत शैलेंद्र जी का लिखा हुआ, संगीत की देवी लता जी की डट भरी आवाज में हमने आपके गीत को पेश किया है, जबलती फिल्म का नाम। एक और डट भरी गीत पेश करने जा रहा हूं दादा हेमंत कुमार जी की आवाज में। कैफी आसमी जी ने गीत को लिखा और नगमा का बोल है, या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो।

0: वालो
1: या दिल की सुनो दुनिया वालो या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। डट भरे गीत कैफी आसमी जी का इतनी खूबसूरत डट भरे अल्फाजे अपनी डट भरी आवाज में दादा हेमंत कुमार जी ने गाकर सुनाए हैं। अनुपमा फिल्म का नाम। मेरे प्यारे सुनवा चंद पल और है जो बचे हमारे और आपका साथ, 11 बजे आपका साथ हम देंगे मेरे प्यारे सुनने वालों, और दो तीन खूबसूरत नगमाएं और है जो आपकी सेवा में हम लाना चाहेंगे। अभी एक जॉयफुल सॉन्ग आप तक हम पेश करेंगे, और ये भी कम जॉयफुल नहीं, क्या नगमा है, राजेंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ इगी जो लता जी संगीत की देवी लता जी गाएंगे द मेलोडी किंग के साथ रफी साहब जी के साथ, कि जीवन पथ पर प्यार निछेरी मधुर मधुर सरगम। आईफी जहांगीर स्तरक्त मेताओ ये वरक समहीद फरहर सिंह ईफ दोरहीन बैठ एनन कुमत तोत रफी साहब जी और लता जी

जीवन पथ पर प्यार निछेरी मधुर मधुर सरगम और भूल चले है सारी दुनिया प्रीत की धुन में हम। खूबसूरत गीत राजेंद्र कृष्ण जी इनका लिखा हुआ, संगीत की देवी लता जी और लेजेंड पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी की आवाजें, एक श्रीमान एक श्रीमती फिल्म का नाम। हम आपको बहुत दूर ले जाएंगे, 1951। ये राजेंद्र कृष्ण जी का भी लिखा हुआ एक नगमा है। लता जी वंस अगेन अब की बार चितलकर रामचंद्र जी के साथ, वही मशहूर नगमा जो अभी तक मशहूर है, सेवा में पेश करता हूं।

महकी हवाएं बहके कदम मेरे, ऐसे में थाम लो आके बलम मेरे। प्यार को मेरे किसने पुकारा और दिल में उतर गया किसका इशारा, यानी ये किसकी लाए तू पकड़ के, दर्द जवानी का सताए बढ़ भर के, शोला जो भर के दिल मेरा धड़के, और दर्द जवानी का सताए बढ़ भर के। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनो वालो, इतना पुराना नगमा, इतनी हिंदी नहीं नंफेस्ट फिल्म अलबेला का ये नगमा राजेंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ, जो मिलकर गाए हैं चितलकर रामचंद्र जी और संगीत की देवी लता जी। जब भी चलता है लोग पसंद करते हैं, अभी तक मशहूर है। मेरे प्यारे सुनो, आप सुन रहे हैं धुन, इसी धुन के साथ दिल की आवाज आराम करते हैं, और जब भी ये धुन हम दोहराते हैं तो मतलब ये कि आखिरी गीत पेश करने का वक्त आ गया है, और उस आखिरी गीत के बाद हम यहाँ स्टूडियो से रुखसत होंगे। उम्मीद और आशा करते हैं कि जिस तरह से आज हमने प्रोग्राम को सजाए हैं, बनाए हैं, आप सभी ने भरपूर भी पसंद किए हैं हियर ऑन यूआर उजाला रेडियो पर। अगले हफ्ते 8 तारीख को ये प्रोग्राम फिर हम पेश करेंगे लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रोहतास से। जितने लोग भी आज साथ दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, दंकीवाल, शुक्रिया। रहा फूल तो फिर खिलेंगे, और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। रफी साहब जी का एक नगमा पेश करने जा रहा हूं, शैलेंद्र जी का लिखा हुआ, एंजॉय। और आपको तो मालूम है आई लव यू ऑल।

चरण संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

हम दोनों मिलके कागज के दिल पे चिट्ठी लिखेंगे और फिर जवाब आएगा, हाँ ना। तुम्हारी कसम फिल्म से गीत निकाला हुआ गया और गीत के गाने वाले आशा जी के साथ मुकेश जी, और मुकेश के साथ अब हिस्सा लेंगे हेमलता जी। उजाला रेडियो का प्रोग्राम है ये।

चल ले चल मेरे जीवन साथी, ले चल मुझे उस दुनिया में जहां बस प्यार ही प्यार हो। हेमलता एंड मुकेश जी, इन दोनों से आप सुने फिल्म विश्वास का गीत। और अब मुकेश जी एक बार फिर।

0: मम्मी फुआ फुफा बहन और ए भाई तो भी सुने है तो उजाला रेडियो
1: आरती मन मानती कहना क्यों नहीं मानती पाठशाला में छुट्टी हो गई बस्ता क्यों नहीं बांधती बस्ता क्यों नहीं बांधती बस्ता

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ओतो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे या बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो तुझ